0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2420-70, मोबाइल नम्बर 98460।

कुछ रिश्ते खत्म होकर भी कहानी खत्म नहीं करते। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर कुछ पल पीछे ही रहते हैं।

कुछ बातें उम्र से लंबी होती हैं और कुछ यादें खामोशी से भी गहरी। अब रात ढले जब नींद नहीं आती तो खिड़की चुपचाप रहती है, बाहर दुनिया चलती रहती है, अंदर कोई घड़ी ठहरी रहती है। मैंने उन रास्तों के नाम अपनी डायरी से मिटा दिए, मगर जाने क्यों कुछ पन्नों ने वो निशान बचा लिए।

0: वो आंखें जो सिर्फ मुझे देखती थी, वो होंठ जो सिर्फ मुझे पुकारते थे, उन पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं होता।
1: वक्त ही कहां था तुम्हारे पास कि उन होठों पर ठहर सको, उन आंखों में उतर सको। अब मैं किसी और

मैं कहानी लिखता हूं, कहानी जीता नहीं, लेकिन वक्त को शायद ये मंजूर नहीं था।

0: गोर्खामा सबैको रोजाई
1: बसाई स्वाद र समारोह सबैको एकै गन्तव्य होटल गोर्खा इन भिलेज प्राली।
0: सम्पर्क होटल गोर्खा इन भिलेज प्राली, बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन 064-420-206, मोबाइल 98510-21-336।